0: वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ।
1: बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग।

लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।

0: खुर्दा।
1: यस डैडी।
2: अपनी भाषा में बोलो।
1: अरे हाँ हाँ, आई एम सॉरी।
3: नमस्ते नमस्ते ओ पिताजी।
4: नमस्ते।
3: जय हिंद ओ पिताजी।
4: जय हिंद।
3: नमस्ते नमस्ते है सबको।
5: नमस्ते
1: नमस्ते नमस्ते नमस्ते।

0: 明天还还还还辛苦啦，多么的给你爱嘿，
1: 我的切，
0: 不是呀，不是呀，来嘿。खुशियाँ ही खुशियाँ लाई है नमस्ते नमस्ते ओ पिताजी
1: नमस्ते
0: जय हिंद ओ पिताजी
1: जय
0: नमस्ते नमस्ते है सबको नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते।

पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागी किसी में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं किसी से भी, हारे नहीं हम।

0: हेलो। हाँ
1: हेलो
0: जी, योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से जी।
1: जी
0: बढ़िया है, गाना सुनना है। फिल्म
1: बताइए। ठीक
0: है संजोग और गीत के बोल हैं यशोदा का नंद लाला। जी
1: है, धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

होशियार, एक दो तीन चार, राजू बड़ा होशियार, होशियार होशियार, गिन ना जाना मेरे यार, होशियार होशियार, खबरदार।

हसीन है, मगर सिर्फ उनके लिए जिन्होंने प्यार किया है, क्योंकि सिर्फ प्यार करने वाले जानते हैं कि आन बान और शान से जीना किसे कहते हैं, है ना।

0: यहाँ लेके आता हूँ, दोनों इकट्ठे खाएंगे। हाँ
1: चिराग सिंह, मेरी माँ सख्त बीमार है, डॉक्टर के पास ले जाना है। गाड़ी ले जा सकता हूँ?
0: हाँ ले जाओ ले जाओ।

0: हेलो। हाँ
1: हेलो
0: जी, योगेश जांगड़े पे मिश्रा, छत्तीसगढ़ से जी।
1: जी
0: बढ़िया है, गाना सुनना है। फिल्म
1: बताइए। ठीक
0: है संजोग और गीत के बोल हैं यशोदा का नंदलाला
1: है, धन्यवाद।
0: जी। धन्यवाद।

बड़ा होशियार, एक दो तीन चार, राजू बड़ा होशियार, होशियार होशियार, गिन जाना मेरे यार, होशियार होशियार बड़ा।

0: कान को बंद कर दिया।
1: दिल धड़क रहा है, जरा ठहर जाइए।
0: लेकिन मैं ज्यादा देर नहीं ठहरना चाहता।
1: मुझे भी जाने की जल्दी है अमर बाबू।

0: माई कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। माई इस लॉटरी का नंबर मिला दे और जल्दी से बादल के नैया को पार लगा दे। अरे पांडू तैयार, अभी तक मोतिया लॉटरी का रिजल्ट लेकर नहीं आई रे।
1: आती होगी गणपत भैया, तब तक माता जी का आशीर्वाद दे ले।
0: हाँ ले लो ले लो। जय जय जय जय जय जय जय।

0: नमस्कार। हाँ हाँ हाँ भैया, चलो चलो चलो चलो चलो।
1: माय सिंपथीज, मुझे आप दोनों से पूरी हमदर्दी है।
2: क्या बात है,
1: दोष में तो है।
3: दिलीप कुमार, सुरेश राही।
0: माफ कीजिएगा, मेरा नाम दिलीप कुमार नहीं है, मेरा नाम तो दिलीप खन्ना है ना?
3: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मिस्टर दिलीप खन्ना
0: जी,
3: ये जो मेरी सहेली है ना अंजू, यानी कि आपकी होने वाली
0: पत्नी।
3: हाँ।
0: जी
3: पागल
0: जी,
3: पागल, बिल्कुल पागल। 5 साल से मेरी ट्रेनिंग में है, फिर भी इसका दिमाग दुरुस्त नहीं।
0: साफ साफ बताइए ना, मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
3: 5 साल से मैं सिर्फ एक ही मंत्र इसके कानों में फूंकती जा रही हूँ, शादी मत कर, शादी मत कर, शादी मत कर। लेकिन

0: पहले कहीं मिल चुके हैं, जब तुम मोटर ट्रेन बने थे।
1: वो तो बन गया था
0: प्यार के सिलसिले में।
1: सिलसिले से सिलसिला और कड़ियों से कड़ियां मिली जुली होती है।
0: जब जाकर जिंदगी का पता लगता है,
1: अफसोस तो यह है कि इसके बाद भी जिंदगी में पता नहीं मिलता।
0: ये सब तुम क्यों जानना चाहते हो? इसलिए कि मैं सुनारी से मोहब्बत करता हूं।
1: सुनारी
0: शुगर लॉक, लेकिन वो तुमसे मोहब्बत करती है।
1: धनलक्ष्मी गुड लक।
0: आदमी समझदार मालूम होते हो,
1: पहचानते हो मुझे।
0: सीआईडी और पुलिस तुम्हें अच्छी तरह पहचानते हैं, लेकिन सुनारी नहीं। मैं चाहता हूं शादी से पहले।
1: हो तो आप पूरी तैयारी करके आए, लेकिन आपने कैसे यकीन कर लिया कि शादी मैं सुनाली की शादी करूंगा?
0: अब शादी तुम्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि शरीफ लड़की आगे बढ़कर पीछे नहीं हटा करती।
1: लेकिन तुम कौन होते हो?
0: वक्त कम है, दो बात साफ सुन लो। शादी से पहले तुम सुनाली से साफ साफ कह दोगे कि तुम क्या हो, और शादी के बाद उसकी आंखों में एक बूंद आंसू भी आए तो तुम्हारे खून से ठंडे किए जाएंगे।
2: नमस्कार, मी स्वप्निल जोशी, तुम्ही ऐकताय रेडिओ विश्वास 90.8।